0: वाह वाह वाह वाह। पर वरी ये कौन सी ठुमरी है?
1: ये स्कॉटलैंड की ठुमरी।
0: स्कॉटलैंड की?
1: ये दो ही चीजें तो स्कॉटलैंड की मशहूर है, या ठुमरी या ठर्रा।
0: नशा आ गया। लेकिन मास्टर जी, ये ठुमरी है या ठर्रा?
1: ये ठर।
2: चमकाने जी,
1: ठुमरी चालू करता हूँ सेठ जी।
0: चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं
1: सेठ जी, आप जरा ठंडे हो जाइए। सेठ जी, फिर

इस्लाम का फकीर और ये ठाट बाट, ये झंडे, इससे तो हम अकेले में निपटेंगे।